एक्स का एफ एम कवा उलंगाई पंगम तनु कुछ आउंगा प्रोग्राम को सबूजी से का के रदो के कवे तू का कई से पंगम कोई कई कवा रदो के नुमरो या वने तें सेवा पेन नेख एफ एम वनम तू तू कोई आउंगा उलंगा हम कोई सबूजी से का के आ प्रोग्राम को ना के अकोई अलिकवा उलंग हजिचा हम तू तू कोई मुआ का उलंग हजिचा वो सबूजी से का के रदो के कवे तो कई से पंगो को सीधे का हुआ अमन खोसे में कोकोमा का हुआ मन खो पल पल में कोकोमा वो सीधे कवन है के नुई आम पंगो बा तेरे ना सिंह ता तेरे ना सीधे का कुसिंग अमन खो पल पल के सेशुना वो जिके में तेरे चोंगो वो लांग को सब जिसे का के रातुए कवे तो कई से अकुए कई कुआ रातुए नुमरु या उन्हें तेरे सेवा पेन नेहा एफएम के मोंगो मसो तेरे तो उंगो बा वो लांग